पहला ही अक्षर के मतलब है दिल लागल दिल लागल दिल लागल, दूसरा का मतलब इश्क हुआ, तीसरा

पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे डिस्को के धुन पर अपने प्यारी के साथ, खूब नाच भी करेंगे।